0: आजकल एआई भोइस फेक भिडियो को माध्यम ठगी करने डिजिटल लेंडिंग भन्द झूठो लोन एप बनाकर स्कैमिंग करने क्रिप्टो र इन्वेस्टमेंट ट्रैप फेक बैंक सर्वे व अफर को माध्यम ठगी करने ठगर को बिगबिगी बढ़े होना इसका ठगर सावधान रहो कुछ समस्या पड़े में वा आपू ठगी बैंक में वा नजिके को प्रहरी में खबर करो वित्तीय तथा विद्युतीय माध्यम को कारोबार को सचेतना का लगी स्थानीय बैंक द्वारा जारी
1: वाइफाई नेपालको स्टुडेन्ट अफर 70 एमबीपीएस को 12 महिनाको इन्टरनेट प्याकेजमा 6 महिना बोनस मात्र रु 8,350 फ्याट सहित जानकारीका लागि 01597078789 मा सम्पर्क गर्नुहोस् वाइफाई नेपाल स्पीड पनि सस्तो पनि